कल यानी 20 तारीख को रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और निर्देशक एटली की बात करें तो क्या जबरदस्त तारीफ की है भाई। वैसे तो लगभग सभी ने तारीफ की है इसके एकदम भव्य ट्रेलर की, लेकिन एटली जब कुछ कहते हैं तो भाई निर्देशक हैं, ऐसे में उनकी बात अलग ही मायने रखती है। उन्होंने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्साइटमेंट है इस मूवी का वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जवान जैसी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और वो मुरीद हो गए हैं इस ट्रेलर को देखकर। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि नमित मल्होत्रा निर्देशक जो निर्माता है और निर्देशक नितेश तिवारी हैं और फिल्म की स्टार कास्ट

सब जबरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजन, विजुअल्स और कलाकारों के अभिनय की जबरदस्त तारीफ है, क्योंकि वो भव्य है, जादुई है, उनका जो अनुभव है वो देखकर ऐसा ही कुछ है। हर एक पर्सन की उन्होंने अलग अलग तारीफ की है, पूरा फ्रेम उन्होंने भव्य, नया और जादुई महसूस होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी तय है रामायण की। और एक फिल्म और है जिसके ट्रेलर का हम सबको इंतज़ार है, और उसकी रिलीज़ यानी ट्रेलर की रिलीज़ डेट कह सकते हैं या फिर उसका जो लॉन्च है वो भी काफी भव्य होने वाला है। वो कौन सी फिल्म है जानेंगे तो बताएंगे थोड़ी देर में, आपको जानना ही होगा क्योंकि उस मूवी की भी काफी चर्चा है। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं।

तो जी, अभी रामायण की बात की, क्या ग्रैंड उसका लॉन्च किया गया है उसका ट्रेलर, और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है, और इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश, और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च होगा और वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है। बेंगलुरु के एक ग्रैंड इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा। और टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, इसके लिए हम सब की जो जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे इसकी जो अपडेट्स हैं वो और ज्यादा आ रही हैं। फिलहाल देखेंगे ट्रेलर देखकर हम सब की क्या राय बनती है। वैसे एक बात तो फिक्स है कि जब यश होते हैं किसी मूवी में तो वो मूवी काफी यशस्वी बन जाती है ना। तो फिलहाल देखते हैं इस मूवी का क्या हाल होता है।

आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेडियो दिल से दिल तक। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, लौट कर आती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ जिन्होंने जवाब दिए हैं सही या गलत, डजंट मैटर। फिलहाल आपको बता दूं, मैंने पूछा था कि अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में कौन है, आपको बस यही बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

मैसेज सबसे पहले दिखा, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको हम शुरू से लेते हैं ताकि कोई नाम मिस ना हो। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज भी दिखा है, लेकिन हाँ सबसे पहले अपना नाम लिखने को कहा था। कई बार मिस हो जाता है आपका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा, फिर आंसर लंबा लिख दिया। आंसर लिखना है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, बस इतनी सी बात, और आंसर भेज देना है, दैट्स इट। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, इरशाद अशरफी शहर का नाम है इनके, और इरशाद का नाम इरशाद है या अशरफी है या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद इन्होंने राजस्थान से मैसेज किया है। और हैरी सिंधु बठिंडा से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, उसके बाद सुखलाला बाला का है वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे कोमल और पूजा का दिल्ली से सही जवाब के साथ। ये सब सही जवाब के साथ आंसर्स आए हैं, इम्तियाज सही जवाब के साथ मैसेजेस आए हैं, और इम्तियाज जवाहर कैम्प कृति नगर से लिख रहे हैं, और निकिता कहाँ से लिख रहे हैं पुणे से लिख रही हैं, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से, और विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, संजय खत्री कोल्हापुर से, और तुषा ये नेक्स्ट मैसेज अपना नाम सबसे पहले लिखते तो अच्छा लगता ना, ढूंढना पड़ रहा है मुझे, निधि प्रयागराज से, और रणवीर मोनिश ये कहीं से लिख रहे हैं अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, मीना चौधरी शास्त्री नगर मेरठ से, दानिश कतौली से, और तवसीफ अहमद का मैसेज श्रीनगर से आया है, और मिसेस धर्म भाटिया जी का मैसेज रोहतक से आया है, राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ललित का मैसेज आया है पंजाब से, राजीव कुमार का मेरठ से, और टूडेज क्वेश्चन इज आंसर इज, भाई क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था, चलिए ठीक है अपना नाम भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, नाम नहीं लिखा हुआ है। सीमा मेरठ से लिख रही हैं और ये भाई थैंक यू सो मच, तारीफ में आपका नाम गुम हो गया। औरंगाबाद बिहार से महेंद्र प्रताप सिंह का मैसेज, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, अजय कुमार का छत्तीसगढ़ से, और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अपना नाम सबसे पहले आपने भी नहीं लिखा है उमेश, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने लिखा है खयाला से, और आप में से कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज, ढूंढ कर लाती हूँ और आपको कॉल मिलाती हूँ नेटवर्क में।

आप सबके नामों की जिन्होंने जवाब दिया है आज के क्विज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम्प दिल्ली से लिख रहे हैं और इनका ही

0: तो चलिए, इस वक्त हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर आज का बॉलीवुड सरताज कौन है, और बॉलीवुड सरताज हमारे बीच ही हैं। वो अपना नाम स्वयं बताएंगी और कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं, सब कुछ जानने के लिए अगर आप हैं बेताब तो लीजिए, हाजिर हैं आज की बॉलीवुड सरताज। हेलो,
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम, मैं मीना चौधरी फ्रॉम मेरठ से बात कर रही हूँ। धन्यवाद
0: मेरठ से मीना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। मीना, क्या करती हैं आप?
1: जी। मैम, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हूँ।
0: वाह, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हैं और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो सुन रही हैं। कैसे, सब कुछ शांति है?
1: जी, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी
0: बागपत,
1: चला के जा रहे थे, और
0: हाँ
1: इस
0: हाँ
1: समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
0: हमें कितना अच्छा।

0: बस सब कुछ बहुत अच्छा है। और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी
1: बागपत।
0: चला के जा रहे थे और
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
1: हमें कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, घर पे हैं, कहीं से भी आप हमें सुन सकते हैं और हर वर्ग के लोग सुनते हैं, बहुत मजा आता है। तो मीना, पहले तो आपको बॉलीवुड सरताज बनने की ढेर सारी बधाई करते हैं, क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। एक बार ऑन एयर भी आप बता दीजिए, मैंने पूछा था अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं,
0: अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में तुषार कपूर है।
1: तुषार कपूर। ग्रेट, इसी के साथ आप बनती है बॉलीवुड सरताज। क्लैपिंग आपके लिए,
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू,
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है
0: धन्यवाद।
1: मीना जी?
0: बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है मैम। सबसे पहले मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा।
1: सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बस यही सुनना था मुझे। तो मीना जी, आप दिल्ली पुलिस में हैं, आम नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी?
0: आम नागरिकों को मैम बस मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अभी फिलहाल ड्राइव करते समय आपसे बात कर रही हूँ, बस कोई भी गाड़ी चलाते समय फोन पे बातचीत ना करें, रेडियो जरूर सुन सकते हैं।
1: हाँ, रेडियो सुन सकते हैं, बट गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है और थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से दिल से दिल तक आप जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। ठीक है मीना जी,
0: नमस्कार,
1: ओके बाय।
0: नमस्कार मैम, थैंक यू।
1: तो ये थी मीना आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक जुड़े रहिए। फिलहाल 1 बजे आपके लिए क्या खास होने वाला है अगले प्रोग्राम में बताती हुई जाऊंगी। इस गाने को तो सुन लीजिए।

लेकिन हाँ लौट कर आऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस एक घंटे बाद। एक घंटे बाद लेकर आऊंगी हमारे एक्सपर्ट को रेनबो हेल्पलाइन में, और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है और ऐसे में अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है हेयर फॉल को रोकना, जो हम सब के साथ कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और भी बहुत सारी हेयर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अगर आप उन सब का निवारण चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहना है। यहाँ हर टॉपिक पर बातचीत होती है और आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, स्किन एंड हेयर केयर इन मॉनसून। और एक्सपर्ट इज नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगी 1 बजे, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। लेकर आऊंगी भारती तनेजा को और आप सबके सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, ये आपकी मर्जी। फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए दीजिए विदा, लौट कर आती हूँ और उससे पहले एंजॉय कीजिए वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले इट कूल उत्कर्ष के साथ। बाय बाय।

फिलहाल तो समय यही कह रहा है कि बॉलीवुड ट्रेल से लेना होगा। बबीता त्रिपाठी के विदा यानी बीटी विद बीटी का फिलहाल यहाँ पर समाप्त किया जाता है। एक गाना आपके लिए छोड़कर जा रही

0: sure many of you have your own creative hobbies, whether it's drawing, painting, calligraphy, knitting, origami, or anything else. Tell us all about what you enjoy making at 9868-107070 on WhatsApp while we take a very short break.
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर बिंदास बोल
4: तो पार्टी शुरू हुई है
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
7: आज की रात
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
5: म्यूजिक मस्ती
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती
0: Some of the most relaxing forms of art are the ones you can pick up whenever you have a spare moment. Scribbling with a pencil, humming along to a song, or even doing a little jig can become a wonderful way to unwind after a busy day. Next up, Candy Necklace by Lana Del Rey.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: For those just tuning in, this is 102.6 Akashvani Rainbows, Play It Cool. And today we are talking about the simple pleasures of art that one can make by themselves.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 21 तारीख दिन है मंगलवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री कामे यांगफो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमांता स्वर्गिरी, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री संघे टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravalli@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार

0: देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से

0: प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है।

0: समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे खिनमे मठ तवांग के लामा तेंजिन ग्येलसेन और भिक्षु गणों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

I'm going to go to the hospital.

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे किन्मे मठ तवांग के लामा तेंजिन ग्यालसेन और भिक्षु गणों के आवाजों में बौद्ध भक्ति भजन। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप आनंद लेंगे अंगरक महंता उल्फ पापुन के गाये चंद आसामिया नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अंगारक महंता के आवाज में चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम।

0: अंगारक महंता के इन्हीं आधुनिक असमिया नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजुन पेमा से नियमित योग और व्यायाम के महत्व विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी तंजन पेमा, पीएम श्री जेएनवी तवांग। मैं 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज की कार्यक्रम में मेरी बात का विषय है नियमित योग और व्यायाम का महत्व। आजकल हम ज्यादातर समय मोबाइल फोन, टीवी और किताबों के साथ बैठकर बिताते हैं। इससे हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और हमें जल्दी थकान महसूस होती है। ऐसे में योग और व्यायाम करने से शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। योग करने से हमारा शरीर लचीला और मन शांत रहता है। रोज योग करने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और हमारा मन खुश रहता है। योग जैसे प्राणायाम करने से सांस से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है। व्यायाम जैसे दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना या हल्की कसरत करने से शरीर मजबूत बनता है। इससे मोटापन कम होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। व्यायाम करने से शरीर में ताकत आती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग और व्यायाम से हमें अनुशासन भी सीखने को मिलता है। जब हम रोज समय से उठकर योग या व्यायाम करते हैं तो हमारी दिनचर्या सुधरती है। छात्रों के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे ध्यान लगने की शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर काम अच्छे से कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें रोज थोड़ा समय निकालकर योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए। यह हमें स्वस्थ, खुशी और सफल प्रदान करता है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजन पेमा से नियमित योग और व्यायाम के महत्व विषय पर एक वार्ता।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला नगमा सुनिए लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से श्रेया घोषाल और सुनिधि, क्षमा करें, सोनू निगम की आवाजों में। बोल स्वानंद किरकिरे के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

अगला नगमा पेश है पालोमी घोष की आवाज में। हेलीकॉप्टर ईला फिल्म के इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

कविता सेत और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे वेकअप सिट फिल्म का नगमा। गीतकार जावेद अख्तर और संगीत दिया है शंकर एजान लॉय ने। श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और सुजैन डी मेलो के आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है बार बार देखो फिल्म से अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में। गीतकार आमिर सिंह और तथा संगीत प्रेम हरदीप का।

श्रोताओं, जिले में आंशिक बिजली कटौती होने के कारण कार्यक्रम बाधित होने के लिए हमें खेद है। चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में। राजनीति फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे मैरी कॉम फिल्म का नगमा, बोल संदीप सिंह के और संगीतकार शिवम। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए सत्यमेव जयते 2 फिल्म से जारा एस खान और जैस मानक की आवाजों में। तनिष्क बख्शी द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है जैस मानक ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। शिवाय फिल्म के इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

ऐ दिले मुश्किल गीत के साथ ही फिल्म संगीत का नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत शेख चिन्ना मौलाना और साथियों से नथस्वरम वादन। राग है नीलंबरी और कंबोजी तथा तालम पर संगत दिया है टी नागराजन ने।

जी राग पर शेख चिन्ना मौलाना और साथियों से नथस्वरम वादम। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: भी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर में करगिल विजय दिवस रैन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम आनिया से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हेतु विषयों पर चर्चा की गई। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने एक वाणिज्य जहाज पर हमले के 4 भारतीय नागरिक की मौत के मामले में रूस को तलब किया। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणय का अभियान पहले दौर में समाप्त। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य में परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश की युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। नीट को लेकर उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी हुई है लोग पकड़े गए हैं।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए।

0: आसीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपने सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपने सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि ये मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर स्थित आईजी पार्क में कारगिल विजय दिवस रैन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जोना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से इस सामूहिक दौड़ में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा कल ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सुबह लगभग 11:30 बजे आकाशदीप से शुरू होकर आईजी पार्क में संपन्न हुआ। रैली में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता को उजागर करना है। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम आनिया से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न साझा हितों के विषयों पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोना ने लिखा है कि डॉ. आनिया के साथ बातचीत कर राज्य के विकास संबंधी आकांक्षाओं तथा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना सुखद रहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सार्थक बैठकों से नए विचारों का बढ़ावा मिलता है और अरुणाचल प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत होती है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारत ने वाणिज्यिक पोर्ट एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया है। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि श्री लादानोफ ने कहा गया है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के तकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति प्रदान कर दी है। तकेदा के अनुसार ये मंजूरी भारत में डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ये वैक्सीन 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है जिन्हें पहले कभी डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो।

अन्य कुछ डेंगू वैक्सीनों के विपरीत क्यूडेंगा लगाने से पहले डेंगू संक्रमण की पूर्व जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्र व्यक्ति बिना पूर्व जांच के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति को और खराब हो गई है। राज्यभर में लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ताजा खबरों के अनुसार राज्य के 16 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें जोरहाट, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, तिनसुकिया और गोलाघाट शामिल है। कुल 45 राजस्व सर्कल और 794

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए दो जरूरी सूचनाएं। पहली सूचना, जिला निर्वाचन अधिकारी तवांग द्वारा

जारी अनुसार टू तवांग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि मतदाता सूची का प्रारूप यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार कर लिया गया है। इसे निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर दिया गया है। यदि आप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप 21 जुलाई 2026 से आगामी 20 अगस्त 2026 तक संबंधित बीएलओ के पास या ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म 6, 7 या 8 में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो नागरिक 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से फॉर्म 6 भरकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। दूसरी सूचना अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी कार्यालय लुंगला द्वारा जारी आदेश अनुसार लुंगला उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी दुकानदारों, विक्रेताओं, होटल व्यवसायियों और होमस्टे संचालकों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राहकों को प्लास्टिक या पॉलीथीन के बैग इस्तेमाल के लिए ना दें। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी के लिए कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल थैली का उपयोग करें। 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले कपड़े की थैली को ही केवल विकल्प के रूप में अनुमति दिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थानों को उचित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा चुका है। सूचनाएं समाप्त हुए। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए गेलोंग जाम्पा वांगचू आनी सिटम जांगमू आनी यांगचिन और साथियों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 4th कक्षा के विद्यार्थी श्री तिनजिन जिगतिन नमडोल की से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आनंद लीजिए अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम और अभिजीत भट्टाचार्य के आवाजों में आ अब लौट चले फिल्म के चंद नगमे आज शाम 7:11 पर। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक में सुनिए पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक जी से शिक्षा प्रणाली में बदलाव और सुधार के आवश्यकता विषय पर एक वार्ता। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने के अंतर्गत सुनिए मैरीकॉम फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 बजे व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 22 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार से चंद हिंदी भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आसामिया फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम मेरी बात महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नई नारी संगीत में आनंद लीजिए
डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी।

सिमरन फिल्म से गुरु रंधावा और जनिता गांधी, महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर, नीरजा फिल्म से कविता सेठ, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी और वेकअप सेठ फिल्म से कविता सेठ की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन, तुम मिले फिल्म से नीरज श्रीधर, क्रुक फिल्म से निखिल डिसूजा, थैंक गॉड फिल्म से जुबिन नौतियाल, जब वी मेट फिल्म से मोहित चौहान, एक पहेली लीला फिल्म से उजेर जसवाल, वीर फिल्म से राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो, वांटेड फिल्म से श्रेया घोषाल और शान, और दिल्ली सिक्स फिल्म से मोहित चौहान के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए पंडित उल्लास बापट से संतूर वादन का कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरे में सुनिए आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित शिक्षाओं के श्रृंखला का शेष भाग कल शाम 5:00 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर सुनिए साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम नांगछुए कलोप, लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोगा। बोध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग तवांग के छात्रिका कुमारी जम्बे छुजुम और साथी छात्रों के आवाजों में चंद बोध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर सुनिए हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए इंडिया मोस्ट वांटेड फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Give one, give one,

Kandrung gundi lama la belai tuwang derji jala zowande.

0: संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस की मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Rajya Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue. Amid the continued uproar, the chairs adjourned.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने की सरकार की

0: The sun comes up, the sky turns blue, the birds all sing a song so true, the flowers bloom, the rivers flow, the gentle winds begin to blow, the trees stand tall with arms so wide, they give us shade and fruits inside, the butterflies dance in the air, with colors bright beyond compare, the mountains high, the valleys deep, the stars that twinkle while we sleep, nature is a gift so grand, let's protect it hand in hand, the buzzing bees, the buzzing sound, the ants that march along the ground, each little creature has its place in nature, warm and kind embrace. So plant a tree, don't waste the rain. Keep the earth happy, free from pain. For nature smiles when we all care. It gives us life, it's always fair. Thank you.
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के चौथी कक्षा के विद्यार्थी श्री तिंजिन जिगतिन नामरुल की से एक अंग्रेजी कविता।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की, खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:13 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आज आप आनंद लेंगे आ अब लौट चले फिल्म के चंद नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, 21वीं से कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, शब्बीर कुमार, साउथ खान, विजेता और साथियों की आवाजों में। आ अब लौट चले फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ, कुछ

0: अब लौट चली फिल्म की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में आज आप सुनेंगे पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक जी से शिक्षा प्रणाली में बदलाव और सुधार की आवश्यकता विषय पर एक वार्ता।
1: सुले लद्दाख में बोलते हैं और टशिदेले नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तुझे टशिदेले, मैं तवांग बहुत सालों से आना चाहता था मगर ऐसा हुआ नहीं और इस बार हुआ, इसके लिए बहुत खुशी है। और यहाँ आप लोगों से, खासकर शिक्षकों से मिलके तो और भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक शिक्षक से मिलना सैकड़ों बच्चों से मिलने के बराबर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी आज हम चर्चा करें उसे अपने बच्चों तक भी ले जाएं, बांटें और पूरा

आगे के दिनों में हम शिक्षा में एक परिवर्तन देखें बच्चों की जिंदगियों में, तो ये मेरा काम रहा है लगभग पिछले 30 सालों से। और आज बहुत खुशी है कि हिमालय के इस छोर पर, आपको शायद पता हो हम सुदूर पश्चिम हिमालय से हैं, लद्दाख फार वेस्टर्न एंड और आप फार ईस्टर्न एंड। तो आज एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्व का हिमालय एक साथ मिलके चर्चा कर पा रहे हैं, और वो भी उस विषय पर जो कि हमारे जीवन में, हमारे समुदाय के जीवन में बहुत बहुत असर करता है, फर्क करता है, और वो मुद्दा है शिक्षा का। तो मैं कुछ ख्यालात शिक्षा में और क्या जरूरत है बदलाव की, सुधार की, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बांटना करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, खासकर जब हम हिमालय या हिमालय के पार के समुदायों या बच्चों की बात करते हैं तो बहुत बार हम पीछे रह जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम मुख्य धारा में नहीं हैं, हम अलग पहाड़ों में हैं। तो इसलिए हमें कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि यहाँ के लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, जबकि सच्चाई वो नहीं है। तो उसे समझने के लिए मैं कुछ बातें करूँगा और फिर कुछ चित्रों के साथ, तस्वीरों के साथ आपके साथ बांटना चाहूँगा हमारे कुछ तजुर्बे, अनुभव लद्दाख के इसी विषय पर। तो हालांकि शिक्षा हम सब के जिंदगी में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है, हम अपने जीवन का, आपने सोचा है, एक चौथाई हिस्सा शिक्षा के नाम कर देते हैं, और हम अपने जीवन को मिलुस रिम्पोछे बोलते हैं, शायद आप लोग भी बोलते होंगे मिलुस रिम्पोछे, जो कि मिलना बहुत कठिन है मानव जीवन। और इस कठिन मानव जीवन में से एक चौथाई तो हम शिक्षा के नाम पे दे देते हैं 15 से 20 साल, और फिर उसमें क्या होता है उस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं, उसमें क्या बदलाव आने चाहिए वक्त के साथ उसमें हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा एक रीति रिवाज कर्मकांड सा बन जाता है, रिचुअल सा बन जाता है, जिसमें डालें बच्चों को, फिर 15-16 साल के बाद निकालें, उसके बीच उसमें क्या होता है, वो जीवन का नींव है बच्चों के, और ना सिर्फ बच्चों के बल्कि पूरे राष्ट्र के, कौम के नींव तैयार होती है इन्हीं विद्यालयों में शिक्षकों के हाथों। तो उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, ना शिक्षा पर, ना शिक्षकों पर, उनकी ज़रूरतों पर, कैसे उनके हुनर को, उनके ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहें, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सिर्फ हिमालय में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, खासकर उसके बदलाव पर, परिवर्तन पर। हम कभी कभी 50 साल पुराने नीतियां, तरीके लेके बैठ जाते हैं, कभी कभी तो 200 साल पहले के, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन आए। जब शिक्षा में परिवर्तन नहीं आए तो बच्चों में परिवर्तन नहीं आएगा, तो लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा, तो जीवन में, दुनिया में, शहर में, राष्ट्र में परिवर्तन कैसे आए। मैं कुछ उदाहरण दूंगा कैसे खासकर हम पहाड़ों में पिछड़ जाते हैं, बच्चों के कारण नहीं बल्कि उनकी शिक्षा में जो कमियां हैं उनके कारण। लद्दाख में, और शायद मेरे ख्याल से यहाँ भी आप देखते होंगे कि हम एक अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं इस बड़े भारत में, जो कि 700 करोड़ या ऐसे 1.4 बिलियन का माना जाता है, 140 करोड़। तो ऐसे बड़े देश में हम बहुत छोटे से अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और उनकी कठिनाई तो और भी ज्यादा है, कठिनाई तो दिल्ली में भी है बच्चों के साथ शिक्षा में, मगर जब हम पहाड़ों में छोटे छोटे समुदाय जो बहुत ही अलग परिस्थितियों में जीवन गुजारते हैं उनकी देखें तो उनकी कठिनाई दुगनी हो जाती है। अब दिल्ली में ही शिक्षा बहुत पिछड़ी है, दिल्ली ही नहीं, न्यूयॉर्क में भी, मेरा तो ये ख्याल है।

हम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाते सिखाते उन्हें मैं तो कहूंगा बोर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जिंदगी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हम किताबें उनके सामने रख देते हैं, किताबों से उनको हर चीज दिखाना चाहते हैं। कभी कभी तो हम ऐसा देखते हैं कुछ स्कूलों में कि वो टी फॉर ट्री पढ़ रहे हैं और ट्री का तस्वीर एक फटे पुराने किताब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ना कि उस पेड़ से जिसके नीचे बैठकर वो टी फॉर ट्री सीख रहे हैं। कोई ये ट्री है नहीं बताएंगे, टी फॉर ट्री याद करो, वो कर लिया एग्जाम में लिख दिया तो आप पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए। ये ट्री है जिसके नीचे आप बैठे थे, अभी आप चढ़े थे, वो नहीं जोड़ते हैं जिंदगी से। तो ये बहुत हालत हमारी खस्ता है शिक्षा के मैदान में, हर चीज को किताबी बना दिया है। पढ़ने और लिखने के एक प्रक्रिया को हमने शिक्षा कहना शुरू किया। शिक्षा तो जीवन के लिए बच्चों को तैयार करने की प्रक्रिया है, मगर वो कब से किताबी हो गई, कक्षा के भीतर की एक प्रक्रिया हो गई, कक्षा में ही रह के जो सुन के शिक्षक से, लिख के कागज पर और इम्तिहान में, वो शिक्षा है। बाकी जो जीवन हो रहा है बाहर, उससे हम काट के एक कैद चार दीवारी में बच्चों को कर देते हैं और सोचते हैं उनकी शिक्षा हो रही। हर चीज थियोरेटिकल, कागजी, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, और जिंदगी अपनी तरफ कहीं और जा रही है। बच्चे एक अलग सी दुनिया में, कागजी दुनिया में अपना वक्त बिता रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं। फिर कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि प्ले वे मेथड बोलकर बदलाव आने लगा और कहने लगे ये तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया आप शिक्षा, प्ले वे, अब बच्चों को खेल खेल में सिखाना होगा। क्या बात है, कितनी सुंदर आविष्कार है, ये हमने पश्चिम से सीखा है, लंदन से सीखा है, वहां पर बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, अब हम खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे। ऐसा एक बदलाव आने लगा 20-25 साल पहले, क्योंकि अच्छा था। कक्षा में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दो इकाई दो, दो दुनी चार, ये रटने से तो बहुत अच्छा था कि खेल खेल में सीखेंगे, कुछ खिलौनों के साथ सीखेंगे, कुछ बाहर जाके सीखेंगे। ऐसा बदलाव आने लगा, वो चाहे कुछ प्राइवेट स्कूल्स में जिनको प्ले वे स्कूल्स करके बड़े बड़े साइंस लगते थे, ये तो बस अब ट्रेंड है, फैशन है, या फिर उसके बाद सरकार ने भी उसे लिया सर्व शिक्षा अभियान में, खेल खेल में पढ़ाई होगी। अच्छी बात है, बदलाव है, मगर अगर हम इसे कहें एक बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया हमने, नया बहुत तीर मार लिया शिक्षा में, तो मुझे उस पर हंसी आती है। खेल खेल में शिक्षा, ये किसी अंग्रेज ने लंदन में 20 साल पहले 30 साल पहले आविष्कार किया, ऐसा कुछ नहीं है। खेल खेल में शिक्षा तो आप प्रकृति से सीखिए, कुदरत से सीखिए, इधर उधर आंखें खोल के देखें तो खेल खेल में शिक्षा के उदाहरण ही मिलेंगे। अपने बच्चे को घर में देखिए, स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, खेल खेल में ही सीखता है, चाहे वो गुड़िया के घर बनाता हो, चाहे वो कभी पापा बनता हो, मम्मी बनती हो, खेल खेल में सीख रहे हैं वो। उसको हम बंद करके अब तुम्हें सिखाएंगे हम बोल के क्लासरूम में डाल देते हैं, ये तो हुआ। हम क्या करते हैं, जो प्रक्रिया चल रही है उसे बंद करते हैं जिससे कि वो सीख रहा है, क्योंकि हमें वो खेल लगता है, और खेल बंद, खेल अलग पढ़ाई अलग। इसीलिए किसी ने तो कहा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये हमारा नजरिया था शिक्षा की तरफ। फिर किसी अंग्रेज ने प्ले वे मेथड निकाला तो सब लोग प्ले वे प्ले वे प्ले वे करने लगे। असल में प्ले वे हमारे बच्चे नेचुरली कुदरतन करते हैं, प्ले वे, प्ले वे से ही सीखते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ इंसान के बच्चे नहीं, सबसे बड़ी हंसी तो मुझे इस बात पे आती है कि कुत्ते बिल्ली भी हमसे आगे हैं प्ले वे मेथड में। हा? आपने कभी देखा है कुत्ते बिल्ली कैसे सीखते हैं? बिल्ली के जो बच्चे होते हैं किटन्स, वो कैसे सीखते हैं, बिल्ली माँ उन्हें कैसे सिखाती है? आपने देखा होगा, अगर गौर से देखा हो तो छोटी बिल्लियों को बिल्ली माँ तैयार करती है जिंदगी के लिए, क्या कहते हैं, लाइवलीहुड के लिए। अब हमारा तो लाइव

लाइवलीहुड, दुकान चलाएंगे, अफसर में नौकरी करेंगे। बिल्ली की लाइवलीहुड क्या है? चूहे पकड़ना है। और आपने देखा है बिल्ली कैसे तैयार करती है अपने बच्चों को लाइवलीहुड के लिए? वो अपने पूंछ को ऐसे हिलाएगी और उसके बच्चे पूंछ पर झपटेंगे। इससे उनके मसल्स, उनकी आंखों के, हाथों के, बॉडी, आई हैंड आई बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सब तैयारी हो रही है कि कहां मूव हुआ माँ का पूंछ, उस पे हम झपटे। तो उनका सारा न्यूरल नेटवर्क, मस्कुलर कनेक्शंस, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, इन सब की तैयारी कर रही है बिल्ली माँ उनको ये टीचिंग एड। उसका पूंछ, अगर हम शिक्षा विभाग की भाषा में कहें तो वो टीचिंग एड है। उसने अपने पूंछ को टीचिंग एड बना के बच्चों को दिखाना शुरू किया कि तुम्हारा शिकार यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां जाए तो क्या करोगे? जंप करेंगे, पकड़ेंगे। अब बिल्ली माँ अपने बच्चों को जीवन के लिए तैयार कर रही है। जब वो पकड़ के खाना नहीं लाए तो तुम खुद कैसे जियोगे बड़े होकर? और उनका जीवन है चूहे पकड़ना। वो अच्छा खासा सिखा रही है। और कौन से शैली में सिखा रही है? प्ले वे मेथड से, प्ले वे में। अगर वो प्ले वे मेथड नहीं करती और हमारे इंसानों की तरह करती तो क्या करते? तीनों या चारों छोटी बिल्लियों को रखती और याद करवाती, इफ यू सी ए माउस टेक पोजीशन जंप, इफ यू सी ए माउस टेक पोजीशन जंप। और बिल्ली छोटी छोटी यही याद करते रहते साल भर, इफ यू सी ए माउस टेक पोजीशन जंप। और चूहे पकड़ना नहीं आता, यही बोलते रहते इफ यू सी ए। और वो शायद लिख के देते और 10 में से 10 मिलता, मगर हाथ में चूहा कोई नहीं आता। और जिंदगी में औरों के सहारे चूहे दे दो, चूहे दे दो। मुझे पकड़ना नहीं आता है मगर मुझे नौकरी दे दो, मैं हिसाब रखूंगा कितने चूहे गए, कितने चूहे आए। कौन चूहा कहाँ रहता है वो सब रख सकता हूँ। पकड़ना तो नहीं आता है क्योंकि मैंने तो इफ यू सी द टारगेट टेक पोजीशन पाउंस यही सीखा है, पकड़ा तो कभी है नहीं। तो ये प्ले वे मेथड इंसान का आविष्कार नहीं है, ये तो कुदरत का एक प्रक्रिया है। और इसे तो कुत्ते बिल्ली भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो खेल ही खेल में अपने जीवन के लिए तैयारी करते हैं और फिर जीवन में बहुत सफल चूहा पकड़ने वाले बन जाते हैं, है ना? उनका तो वही लक्ष्य है तो वो बनते हैं। उनका एजुकेशन यही है। जब बिल्ली बच्चों के साथ खेल खेल के ये कर रही है तो ये उनका शिक्षा हो रहा है, उनके जिंदगी का शिक्षा हो रहा है। तो हम हमारी जिंदगी के शिक्षा को भी व्यवहारिक क्यों नहीं बनाते हैं? व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनाते, ताकि हमारे बच्चे भी एक तो रट रट के कक्षा के अंदर बंद बैठ के बोर ना हो जाएं, कहां फंस गए? क्योंकि ये बच्चों का प्रकृति नहीं है, बच्चों का प्रकृति है खेलना। आपने देखा बच्चे कितने कूद कूद के खेलने जाते हैं, वो उनकी गलती नहीं है। हम पकड़ के उसको यहां रखते हैं पर खेलेगा नहीं। कुदरत ने उनमें खेलने की ये लर्निंग सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है। खेल खास कर देखें तो खेल एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिसे उसी उम्र में दिया है कुदरत ने। कुदरत ने बहुत समझदारी के साथ इस सिस्टम को डिजाइन किया है। कभी आपने सोचा है जब वो 2, 3, 4, 5 साल के उम्र के होते हैं तो बहुत खेलना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं हर चीज के बारे में। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, हर चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं। आग है तो उसमें आग में हाथ लगा के ही रहेंगे, आप चाहे जितना उसको रोकें, वो उसका एजुकेशन हो रहा है। उसका हाथ जले तभी उसे पता चलेगा आग गर्म होता है। क्यूरियोसिटी है हर चीज के बारे में, किसी भी चीज को मुंह में डालेंगे, क्यों क्यों क्यों पूछेंगे आपसे। ये कुदरत का तरीका है शिक्षा का। और हम क्यों बहुत सवाल करता है, चुप करके बैठो। इससे भी ज्यादा सवाल करेगा तो कक्षा के बाहर खड़े हो जाओ, ज्यादा बोलते हो, बोलो बात बंद करो, चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो सिर्फ शमशान घाट में ही होना चाहिए जब हम चले जा चुके हो। बच्चे तो फाउंटेन ऑफ एनर्जी हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, हर तरफ पूछें दौड़ें, यही उनकी शिक्षा है। तो ये प्ले वे मेथड हमने, इंसानों ने बहुत देर से समझा, जो जानवर समझते हैं हम

0: अब कह रहे हैं उन्हें खेलने दो। उसी तरह जब वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 7, 8, 9, 11, 12 या टीनेजर्स हो जाते हैं, खासकर टीनेजर्स, तो आज के शिक्षा की दुनिया में हम क्या करते हैं टीनेजर्स के साथ? हम तो यही करना जानते हैं, उन्हें एक क्लासरूम में डालो और उनके किताबें निकालो, लिखो, पढ़ो, याद करो, एग्जाम दो, और ये उनको भाता नहीं है। और फिर वो जब थोड़ा रिबेल हो जाते हैं, नहीं पढ़ना है हमें, हम खेलेंगे, चले जाएंगे, कहीं तोड़ फोड़ कर देंगे, तो हम उन्हीं को कोसते हैं, ये तो टीनेजर रिबेलियन है, टीनेजर रेज है, ये नालायक हैं, कहना नहीं मानते हैं, टीनेजर्स तो बहुत ही क्या कहेंगे, विद्रोह करेंगे, और फिर कुछ तो ऐसे तोड़फोड़ करेंगे, कुछ फिर मायूस होकर, परेशान होकर, दुखी होकर, डिप्रेस हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे टीनेजर्स आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सहारा लेना चाहते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, और हम समाज में उनको कोसते रहते हैं कि क्या हो गया इस जनरेशन को, ये नालायक हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये मुसीबतें करते रहते हैं सबके लिए। तो असल में देखा जाए तो हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। जैसे प्ले वे मेथड हमने जानवरों से सीखा, अपने छोटे छोटे बच्चों से सीखा, वैसे ही टीनेजर्स भी कुदरत के नियम अनुसार जा रहे हैं, उनको कुछ जरूरतें हैं, कुदरत ने उन्हें किसी खास तरीके से डिजाइन किया है, उस हिसाब से जब माहौल नहीं हो तो वो फिर मेल नहीं खाता है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। आज की दुनिया में हम टीनेजर्स को क्लासरूम में बिठा कर सुबह के 8 बजे से शाम को 4 बजे तक सिखाना चाहते हैं, और फिर नतीजा हो रहा है कि बहुत स्कूलों में डिसिप्लिन की समस्याएं हैं, तोड़फोड़ की समस्याएं हैं, डिप्रेशन, ड्रग्स की समस्याएं हैं। अगर हम देखें सिर्फ आज के युग को नहीं, हम बहुत तंग नजर से देखते हैं आज के युग को, जिस युग में हम जी रहे हैं उसी को देख के हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मगर हम मनुष्य आज कल नहीं बने हैं। हमारा जो ये मॉडल है, अगर हम मशीन की तरह बोलें, ये मॉडल बहुत पुराना मॉडल है, ये मॉडल है युग युग पुराना।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक जी से शिक्षा प्रणाली में बदलाव और सुधार की आवश्यकता विषय पर एक वार्ता। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तर मैसिडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को पुनः पुष्टि की है। उन्होंने सभी घोषणा की है कि भारत उत्तर मैसिडोनिया के लिए भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करेगा। AI से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। स्कोपिया में उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवेस्का दावकोवा के साथ वार्ता के बाद

0: मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज देशभर में जमीनी स्तर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान, उन्हें प्रोत्साहन और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट प्रोजेक्ट चरण का शुभारंभ किया। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत विकसित माय वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस पहल के तहत नागरिकों को अपने जिले की विशिष्ट कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले 1 से 10 मिनट की अवधि के लघु वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त तक वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपने वीडियो जमा कर सकते हैं। पायलट चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा गोवा और लद्दाख भी शामिल की गई है। इस पहल के तहत प्रत्येक जिले में अधिकतम 20 रचनाकारों को ₹50,000 का जिला स्तरीय पुरस्कार, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 तथा राष्ट्र स्तर पर ₹5,00,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री मामा नाथुंग ने आज ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या एवं ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के प्रतिनिधियों के साथ निर्जुली स्थित नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक ने विचारों के रचनात्मक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, जिसका उद्देश्य संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से संबंधित चिंताओं का समाधान करना था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कार्यक्रम के तहत अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार तवांग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों लुमला अनुसूचित जनजाति, तवांग अनुसूचित जनजाति एवं मुक्तो अनुसूचित जनजाति की प्रारूप मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी गई है। ये प्रारूप मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी DEO, संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी AERO तथा नामित बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO के कार्यालयों में आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध है। प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार तवांग जिले में कुल 25,512 मतदाता, जिनमें 12,227 पुरुष एवं 13,285 महिला मतदाता तीनों विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने तथा सतत आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तवांग द्वारा आज एक दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार की मशरूम मिशन पहल के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कीटवेल ब्लॉक के कुल 59 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उद्यानिकी अधिकारी DHO कोंचो ग्यात्सो ने मशरूम मिशन की परिकल्पना और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए किसानों के जैविक पद्धति में मशरूम की खेती को अपनाने का आग्रह किया। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्य निदेशालय द्वारा रविवार को ईटानगर स्थित IG पार्क में करगिल विजय दिवस रेन रन 2026 का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से इस सामूहिक दौड़ में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया गया है। यूथ फॉर चेंज नामक युवा संगठन द्वारा कल ईटानगर में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया, जो आकाशदीप से शुरू होकर IG पार्क में संपन्न हुआ। रैली में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता को उजागर करना था। और अरुणाचल प्रदेश के कराटेका क्योदा तालिक और जॉनी मांख्या ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। क्योदा तालिका में टीम काटा स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि जॉनी मांख्या ने दो रजत पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस उपलब्धि को अरुणाचल प्रदेश के लिए स्वर्णिम क्षण बताते हुए दोनों कराटेकास को उनकी शानदार सफलता पर बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादु। President Draupadi Murmu today said India and North Macedonia have reaffirmed their deep and friendly ties based on shared democratic values and mutual respect. She also announced that India will double the number of ITEC training slots for North Macedonia, including courses in artificial intelligence. Addressing the media in Skopje after talks with President Gordana Siljanovska Davkova, President Murmu said both sides reviewed the entire spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and global

विशाल दादलानी और सलीम मर्चेंट के इस देशभक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आपकी फरमाइश पे प्रस्तुत है इंतकाम फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत, बोल राजेंद्र कृष्णा के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन ताइडे और आशीष मुरेकर से जंगली फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के फरमाइश पर सुनिए आर पार फिल्म से गीता दत्त का गाया गीत। ओपी नैयर द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अगला नगमा सुनिए गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पनवार, डैनी पनवार और मनीष पनवार। रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान से दिनेश चौहान और खलीफों की बावड़ी राजस्थान से खुदा बख्श खलीफा के फरमाइश पर प्रेम कहानी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया नगमा। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है मंडरेलिंग तवांग से तिंजन डोलकर सेरगिरेपा, गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग से शामसुन अंसारी, सांगे छोमू, येशी छोटन, उर्गेन छोमू, केजांग लामू, कुंचो डोलमा, थ्रिंग यांगजोम, थ्रिंग छोकी, तिंजन पेमा, पेमा यांगजोम, निमा लामू, टाशी यांगचिन, छेपल जांगमू, थ्रिंग छोटन, थ्रिंग डोंडुप, लोपसांग तोपदेन, टाशी थ्रिंग और टाशी वांगपोने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है अजनबी फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: बताएं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे बच्चा।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 8:00। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में चर्चा होगी FIH हॉकी विश्व कप, भारत जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच और कॉमनवेल्थ की तैयारियों की, और ये भी जाना जाएगा कि कैसा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहला दिन। लेकिन पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए हॉकी विश्व कप की तैयारियों के साथ, जहां हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20

0: सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया गया है। मोहित एचएस और सूरज करकेरा को गोलकीपर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि डिफेंस की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच के कंधों पर होगी। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की टिकड़ी संभालेगी। साथ ही नीलाकांत शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और आदित्य अर्जुन लाला इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाखड़ा के कंधों पर होगी। भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो टीम अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कड़ी में पहुंच चुकी है और अब टीम के चयन पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी आरपी सिंह। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह आपसे हमारा यही है कि भारतीय टीम में इस बार अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए कि विश्व कप जैसे बड़े अवसर पर टीम में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है?
2: देखिए, ये 6 महीने से जो हमारी टीम प्रिपेयर्ड हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतियोगिताएं, टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, अभी आपने वर्ल्ड हॉकी लीग जितनी भी हो रही थी, तो उसी के एक ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप की और क्या कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा, नए भी हैं, पुराने भी हैं, पुराने क्या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज वाइज मैं बात नहीं करता, जो आज बेस्ट है उसकी बात करता हूँ। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो बेस्ट हमारे पास लॉट है या बेस्ट टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को मौका देने की कोशिश की गई है। और इन नए खिलाड़ियों की जो टीम में मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करती है कि भारतीय हॉकी में जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, वो काफी मजबूत है। मैं ये जानना चाहूंगा आरपी सिंह जी आपसे कि इस पूरी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करने में नई उभरती हुई प्राइवेट लीग्स की कितनी भूमिका है?
2: देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग फिर शुरुआत हुई है, उसके पहले तो अब रेगुलर नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। बाकी जो हॉकी लीग है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले भी जो हमारी हॉकी लीग हुई थी उसी का नतीजा था कि हम लोग टोक्यो में मेडल लाए, फिर पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल लाए। एशिया में हमारी दोनों टीमें जा रही हैं, मेन वुमेन दोनों, और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार वुमेन्स का भी हॉकी लीग हुआ था, मेन्स का भी हुआ था। उससे जो नई उभरती प्रतिभाएं हैं, अपने सीनियर जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो अपने खेल को उनको भी देखते हैं, फिर अपनी कमियों को भी दूर करते हैं।
0: जी बिल्कुल, उनके लिए एक मौका होता है। आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की कि ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी, भारत ने आखिरी बार विश्व कप मेडल स्वर्ण पदक जो है 1975 में मलेशिया में जीता था, वो फाइनल मुकाबला जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था, अब 51 वर्षों का इंतजार हो चुका है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये टीम मेडल लेकर आती हुई नजर आ रही है?
2: देखिए, ओलंपिक में तो हम लगातार ले रहे हैं, ये विश्व कप हम लोग 75 में जीते थे, उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं, तो वो उसका एक मलाल है, क्योंकि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में, सब में मेडल दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में इधर नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारी टीम को क्वालिफाई करना, पहले अपना पूल क्वालिफाई करिए। वर्ल्ड कप जैसे प्रतियोगिता में सभी टीमें तैयार होके आती हैं, तो अभी पहला काम यह है कि हम सब टीमों को पहले पूल को जीतें। हर मैच हमारे लिए वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होगा और हमारी टीम को हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा, तभी हम मेडल की तरफ अग्रसर होंगे।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हर स्तर पर रणनीति होगी और मजबूत तैयारी ही आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय हॉकी कई वर्षों से इस टीम से लगा रहा है। और अब बात करते हैं स्क्वाश की। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में नाह सिंह, सानवी अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में आरवीर दीवान, युषा नसीफ और

0: गुरवीर सिंह की टिकड़ी ने पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में जगह बना ली है। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया।
1: चीन के चांगझो में आज चीन ओपन का पहले दिन खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने 21-10, 21-14 से हरा दिया, जबकि देविका सिहाग को थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रूंगफान ने 21-19, 19-21, 21-13 से हराया। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के यूसी तनाका और आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अली फरहान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में जापान ओपन जीतकर आ रही पीवी सिंधु भारत की उन्नति हुड्डा के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन हमसाक रोड़न और एमआर अर्जुन की जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग का मुकाबला करेगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका गद्दे का मुकाबला चीन के फेन यांग जी और वांग डोंग पिंग से होगा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी चीन के ही गाओ जिंगवा तथा चेन फंगहुई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कह सकते हैं कि भारत के कई अहम खिलाड़ी कल भारतीय चुनौती रखेंगे और सबसे अधिक नजरें होंगी भारत के लिए दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर, कि जिस तरह का शानदार जापान ओपन गुजरा है, क्या वो ये करिश्मा चीन ओपन में भी नशाती हुई नजर आएंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 23 जुलानी यानी बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। ये मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा।
2: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में युवा भारतीय T20 टीम एक और परीक्षा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद टीम की नजरें जिम्बाब्वे में खोया हुआ मनोबल हासिल करने पर होंगी। 3 मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और अंतिम मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी जिम्बाब्वे में खुद को साबित करने के इरादे से खेलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेटगे और रवि बिश्नोई भी भारतीय दल का हिस्सा है। इस श्रृंखला में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज VVS लक्ष्मण टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो टीम की कप्तानी सिकंदर रजा के पास है। टीम में ब्रायन बेनेट और डायोन मायर्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल रहेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे में 2024 में खेली गई पिछली श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एशियन गेम्स से पहले भारतीय इस युवा टीम के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। एक तो उस मनोबल को हासिल करना जो शायद इंग्लैंड दौरे में इस टीम ने कहीं ना कहीं खोया है, और दूसरा एक नई लय बनाना जिसके साथ हम एशियन गेम्स में इस टीम को उतरते हुए देखेंगे। हालांकि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है। तो देखना होगा ये टीम जिम्बाब्वे की धरती पर किस तरह का प्रदर्शन करती है। और इसके पहले जब ये दोनों टीमें जिम्बाब्वे में आमने सामने हुई थी तो भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। हालांकि जिम्बाब्वे अपने मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, एक अच्छी टीम है जिससे अच्छी फाइट की उम्मीद होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी एक इसको एक्सपोजर ट्रिप के तौर पर, एक एक्सपोजर टूर के तौर पर लेना चाहेंगे, जहां पे वो बेहद कई सारा अनुभव लेकर के जापान के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे, जहां ये टीम एशियन गेम्स के लिए जाएगी। और एशियन गेम्स का जिक्र हुआ है तो अब चर्चा की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की भी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, जहां खिलाड़ी 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में पदकों के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से तकरीबन 150

0: जिस 126 खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया है जो 13 खेलों जिसमें पैरा कैटेगरी भी शामिल है उसमें पदकों के लिए मैदान पर उतरेगी और इसमें स्टार जैवलिन थ्रोवर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जो एक शानदार वेटलिफ्टर हैं और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। और खेलों के इस दल और इस पूरे आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो बात यह कि कितना बड़ा ये आयोजन होता है ये श्रोताओं को बताइए और साथ ही कि भारत ने कितनी तैयारियां की हैं इस आयोजन को लेकर के।
1: जी शक्ति, इस आयोजन में 72 टीमें जो है वो हिस्सा लेंगी जिसमें 56 जो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे जबकि 16 दल जो है वो आश्रित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कई सारे खेलों को हटा दिया गया है जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन जैसे खेल शामिल हैं। और अगर हम बात करें 2022 कॉमनवेल्थ की तो भारत ने 61 मेडल जीते थे उसमें और जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं उनमें भारत के 30 मेडल थे, तो यानी कि 47% जो मेडल थे वो खेल अब इस आयोजन से हटा दिए गए हैं।
0: जी बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे कि कितने खेलों को इस आयोजन में शामिल नहीं किया गया है तो शायद हमारे सामने वो मेडल्स और उन खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ताजा हो रही थी जो इन खेलों में भारत के लिए अच्छी संख्या में बड़े नंबर्स में मेडल लेकर के आते थे। और 2022 का आपने जिक्र किया, उसके पहले 2018 की बात की जाए या फिर 2010 जो भारत का सबसे सफल कैंपेन था दिल्ली में भारत ने किसको अंजाम दिया, ये खिलाड़ी इन इवेंट्स में इन खेलों में शानदार मेडल लाते हुए नजर आए। हालांकि अब नजर ये होगी कि जो खेल हमारे सामने हैं उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं, तो किन खिलाड़ियों पे सबसे अधिक नजरें रहने वाली हैं भारतीय दल से।
1: देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं सर्वेश कुशारे जो है ऊंची कूद में, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में, तो और बॉक्सिंग में अगर बात करें तो जैस्मीन लंबारा, साक्षी चौधरी ये अपना दमखम दिखाएंगी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, वहीं तुलिका मान जूडो में, और पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सोमांक राणा शॉटपुट में और शर्मिला भी शॉटपुट में अपना दमखम दिखाएंगी।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए गुरविंदर सिंह पे भी नजर रहेंगी, स्टार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 6 महीनों में भारत में ट्रैक एंड स्पीड इवेंट्स की एक नई इबारत लिखी है। इस खिलाड़ी ने अपने पदक से, अपनी रफ्तार से 100 मीटर में वापस पदक के लिए उतरेंगे और उम्मीद होगी कि भारत इस तरह के स्प्रिंटिंग इवेंट्स में भी अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जैसे पोडियम फिनिश करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखेगा। और नीरज चोपड़ा का तो बिल्कुल जिक्र होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, जहां पे भी खिलाड़ी उतरता है, डायमंड लीग से लेके कोई भी आयोजन। इन खिलाड़ियों के साथ साथ और क्या खास भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो?
1: देखिए, भारत जो है वो इस टूर्नामेंट की जो है चौथी सबसे सफल टीम है, तो उसी की तरह से भारत को खेलना होगा, अपने जो कोर स्पोर्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और उम्मीद होगी कि इतने कम खेलों में भी किस तरह से वो 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ वाला प्रदर्शन दोहराया जाए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में

0: तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र

0: और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए।

0: हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।

0: बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सांगवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिनभर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: Was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a